नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब हम किसी लंबी यात्रा पर जाते हैं तो हम कितनी तैयारी करते हैं, हम रास्तों के बारे में पूछते हैं, नक्शा देखते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, हम अनजाने रास्तों पर बिना तैयारी के नहीं निकलते। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जीवन की इस सबसे बड़ी यात्रा पर, जिसका अंत हम सबको पता है, हम बिना किसी तैयारी के चले जा रहे हैं। हम उन गलियों में भटक रहे हैं जहां हमें रुकना नहीं है। कबीर साहब आज हमें रुक कर अपने रास्ते और गंतव्य पर विचार करने को कह रहे हैं। आइए जानते हैं कबीर के अनुसार वह कौन सा रास्ता है जिसे हमें आज ही चुन लेना चाहिए। जन्म मरण बिचारी करी, कूड़े काम निवारी, जिन पंथ तुझ चालना सोई पंथ सवारी।

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, जन्म मरण बिचारी, सबसे पहले तो उस जन्म और मृत्यु के चक्र पर विचार करो, समझो कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें कहाँ जाना है। जब तुम इस बड़े सत्य को समझ लोगे तो क्या होगा, कूड़े काम निवारी, तुम व्यर्थ के कामों, नफरत, ईर्ष्या और फालतू के बखेड़ों को छोड़ दोगे। जैसे ही हम मौत को याद करते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अगली पंक्ति जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। जिन पंथु तुझ चालना, जिस रास्ते पर तुम्हें अकेले चलना है, जिस परम पथ पर यह जीवात्मा विदा होगी, सोई पंथ सवारी, उस रास्ते को अभी से संवार लो, उसकी तैयारी अभी से कर लो। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको पता हो कि कल आपको अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और जाना है, तो क्या आप इस घर की दीवारों पर कील ठोकेंगे या उस नए घर की तैयारी करेंगे। कबीर कह रहे हैं कि यह दुनिया महज एक पड़ाव है, असली रास्ता तो आगे है। उस रास्ते को नेक नामी और बंदगी से अभी संवार लीजिए। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी टू डू लिस्ट को देखिए। इसमें कितने काम ऐसे हैं जो सिर्फ इसी दुनिया के लिए हैं, और कितने काम ऐसे हैं जो आपकी रूह के सफर में काम आएंगे। अक्सर हम उन रास्तों को सजाने में जिंदगी बिता देते हैं जहां हमें सिर्फ चंद कदम चलना है। आज कोशिश कीजिए उस भीतरी रास्ते को साफ करने की। थोड़ा ध्यान, थोड़ा दान और थोड़ा प्रेम, यही उस अगले पंथ का संबल है। कूड़े काम यानी वो सारी बातें जो आपके मन को भारी करती हैं, उन्हें आज ही विदा कर दीजिए। सफ़र लंबा है, सामान हल्का रखिए और रास्ता सही चुनिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: श्रोते हो रेडियो मन भवन 90.8 FM घेऊनता है खास फोन इन कार्यक्रम हॅलो मन भवन। एक खास संधी तुमचं आवडतं गाणं सांगण्याची आणि तेही थेट रेडिओवर। तुमच्या मनातलं कुठलंही गाणं, काही खास आठवणी, शुभेच्छा किंवा तुमचं मत आमच्याशी शेअर करा। दर मंगळवारी दुपारी 12 वाजता संपर्क क्रमांक 9284499433। तेव्हा विसरू नका, दर मंगळवारी दुपारी 12 वाजता फोन घ्या, गाणं सांगा आणि बनवा हा क्षण खास RJ शुभांगी सोबत, फक्त रेडिओ मन भवन 90.8 FM वर। ऑलवेज

टोमेटियन के लिए रेडियो मन भवन 90.8 FM आरजे शुभंगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग। श्रोते हो, यानंतर जॉनी मेरा नाम हा मूवी आपण कसा काय विसरू शकतो, हो ना, ज्यात चॉकलेट हिरो अपने अनोखे अंदाज में नजर आए थे। तो सुनते हैं ये खास सॉन्ग।

0: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज। आपके मन
1: रेडियो मन भावन 90.8 FM, always half touching।

नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब हम किसी लंबी यात्रा पर जाते हैं तो हम कितनी तैयारी करते हैं, हम रास्तों के बारे में पूछते हैं, नक्शा देखते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, हम अनजाने रास्तों पर बिना तैयारी के नहीं निकलते। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जीवन की इस सबसे बड़ी यात्रा पर, जिसका अंत हम सबको पता है, हम बिना किसी तैयारी के चले जा रहे हैं। हम उन गलियों में भटक रहे हैं जहां हमें रुकना नहीं है। कबीर साहब आज हमें रुककर अपने रास्ते और गंतव्य पर विचार करने को कह रहे हैं। आइए जानते हैं कबीर के अनुसार वह कौन सा रास्ता है जिसे हमें आज ही चुन लेना चाहिए। जन्म मरण बिचारी करी, कूड़े काम निवारी, जिन पंथ तुझ चालना सोई पंथ सवारी।

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, जन्म मरण बिचारी, सबसे पहले तो उस जन्म और मृत्यु के चक्र पर विचार करो, समझो कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें कहाँ जाना है। जब तुम इस बड़े सत्य को समझ लोगे तो क्या होगा, कूड़े काम निवारी, तुम व्यर्थ के कामों, नफरत, ईर्ष्या और फालतू के बखेड़ों को छोड़ दोगे। जैसे ही हम मौत को याद करते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अगली पंक्ति जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। जिन पंथु तुझ चालना, जिस रास्ते पर तुम्हें अकेले चलना है, जिस परम पथ पर यह जीवात्मा विदा होगी, सोई पंथ सवारी, उस रास्ते को अभी से संवार लो, उसकी तैयारी अभी से कर लो। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको पता हो कि कल आपको अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और जाना है, तो क्या आप इस घर की दीवारों पर कील ठोकेंगे या उस नए घर की तैयारी करेंगे। कबीर कह रहे हैं कि यह दुनिया महज एक पड़ाव है, असली रास्ता तो आगे है। उस रास्ते को नेक नामी और बंदगी से अभी संवार लीजिए। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी टू डू लिस्ट को देखिए। इसमें कितने काम ऐसे हैं जो सिर्फ इसी दुनिया के लिए हैं, और कितने काम ऐसे हैं जो आपकी रूह के सफर में काम आएंगे। अक्सर हम उन रास्तों को सजाने में ज़िंदगी बिता देते हैं जहां हमें सिर्फ चंद कदम चलना है। आज कोशिश कीजिए उस भीतरी रास्ते को साफ करने की। थोड़ा ध्यान, थोड़ा दान और थोड़ा प्रेम, यही उस अगले पंथ का संबल है। कूड़े काम यानी वो सारी बातें जो आपके मन को भारी करती हैं, उन्हें आज ही विदा कर दीजिए। सफ़र लंबा है, सामान हल्का रखिए और रास्ता सही चुनिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: श्रोते हो रेडियो मन भवन 90.8 FM घेता है खास फोन इन कार्यक्रम हेलो मन भवन। एक खास संधि तुम आवड़त गाण संगने की आणि तेही थेट रेडियो वर। तुमच्या मनातलं कुठलंही गाण, काही खास आठवणी, शुभेच्छा किंवा तुमचं मत आमच्याशी शेअर करा। दर मंगळवारी दुपारी 12 वाजता संपर्क क्रमांक 9284499433। तेव्हा विसरू नका, दर मंगळवारी दुपारी 12 वाजता फोन घ्या, गाणं सांगा आणि बनवा हा क्षण खास RJ शुभांगी सोबत, फक्त रेडिओ मन भावन 90.8 FM वर। ऑलवेज

रेडियो मन भवन 90.8 FM आरजे शुभंगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग। श्रोते हो, यानंतर जॉनी मेरा नाम हा मूवी आपण कसा काय विसरू शकतो, हो ना, ज्यात चॉकलेट हिरो अपने अनोखे अंदाज में नजर आए थे। तो सुनते हैं ये खास सॉन्ग।